0: रोशि थ्योरी नंबर 642 के लिए तैयार हो जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं तो सामने वाला इंसान क्या दौड़ लगाता है एंड देयर लाइक लुकिंग एट अस एंड सेइंग कि हाँ सोचेंगे करेंगे और हमें ये लग रहा है कि भाई यही बंदा है, इसी के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। एंड देन एक दिन 480 दिनों के बाद यू वेक अप एंड रियलाइज कि हाँ ठीक है यार, इसके पीछे भागना बंद कर देते हैं। कट टू, जैसे ही आप भागना बंद करते हो वही इंसान आपके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। एंड देन यू आर लाइक एक सेकंड, जब मैं जिंदगी के 4 साल तेरे पीछे भाग रही थी तब तुझे मेरी वर्थ नहीं समझ में आई और अब जब मैंने तुझे देना बंद कर दिया है, सडनली यू रियलाइज दैट आई एम द इट गर्ल। ऐसा होता है, ये मुझे पता है, ऐसा क्यों होता है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। और अगर आप भी ऐसे ही चेजिंग एंड एक्टिंग के शिकार हो देन व्हाई डोंट यू हिट मी अप, वी विल कंपेयर नोट्स। और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

माइंडेड। अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है, तू योगराज को मैं ही सिखा दे, तू घर पे आ।

Mirchi, it's hot.

0: चले जब तू लटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए Come on baby kick it kick it काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट क्रिकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लोग

बावला सा रंग तेरा, बावला सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा। तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker. Yeah. Heart beat.

बॉडी लटीन चिकनी चमेली कट कट रीन सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने यूं तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम टू सेट द पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां आपके लिए हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन लेकर आते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है। वी गोइंग टू हैव सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर, तो स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू आउट द काउंटडाउन। सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी। पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार मूव बॉडीज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शान एंड दीदार कौर की आवाज में उदिपन शर्मा का म्यूजिक, श्लोक लाल के लिरिक्स, गाने का नाम है दिलदारा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: ऐसा क्या है ना शान की आवाज में कि उनके गाने को जब हम सुनते हैं वी कैन इमेजिन हिम स्माइलिंग कि ये गाना गाते हुए कैसे स्माइल कर रहे होंगे. मैं उनके बारे में बात करते हुए भी स्माइल करने लग जाती हूँ दीदार कौर एंड शान की आवाज में. दैट वॉज दिलदारा दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो मुझे. कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. आई ट्रूली बिलीव जो गाना हमें पसंद आने वाला होता है ना वो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है. कब कैसे सुनना है, हम कौन सा अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं कि आज मैं वो गाना जाके सुनूंगी और मुझे वो गाना अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं होता है. वी जस्ट स्टंबल अपॉन दैट सॉन्ग. मे बी मैंने रेडियो पे चलाया हो, आपने सुन लिया हो. आप किसी कैफे में है और वहां वो गाना सुना हो. इनफैक्ट मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि पहले वो जो रियलिटी शोज आते थे ना टीवी पे, कोई कंटेस्टेंट जो गाने गा रहे थे लाइव परफॉर्मेंस, उनके थ्रू आई यूज्ड टू लव दोस सॉन्ग्स. एंड देन रिसेंटली इट्स ऑल अबाउट ओटीटी शोज फॉर मी. आई रिमेम्बर मैंने नेटफ्लिक्स की एक ओटीटी सीरीज पे सबसे पहली बार प्रतीक कुहाड़ का तूने कहा मैंने सुन लिया सुना था एंड आई लव द सॉन्ग. बंदिश बैंडिट्स के कितने सारे गाने हैं जो मैं बहुत पसंद है. देन लास्ट ईयर मिस मैश का. इट्स इनक्रेडिबल दैट हमें अब ओरिजिनल म्यूजिक मिल रहा है फ्रॉम ओटीटी शोज. इश्क है फ्रॉम मिस मैश इज वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स. ये गाने इतने बड़े हुए, लोगों को इतने पसंद आए कि इनकी अपनी अलग पहचान बन गई. और काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, इट्स ऑल्सो फ्रॉम अ ओटीटी शो एंड इट्स अ नई नवेली एंट्री ऑन अ काउंटडाउन. मुसाफिर कैफे का गाना है. आई नो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि क्यूट सिंपल सी लव स्टोरी है. मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ, अगले वीकेंड का प्लान है मैं देखूंगी. दो लोग पहाड़ों में छोटा सा कैफे, सबका यही ड्रीम है. एंड जो गाना डेब्यू कर रहा है इस हफ्ते उसका नाम है काफी है ना. ये गाना उस सिंपल सी लव स्टोरी की सिंपलिसिटी को डिफाइन कर देता है. दैट अल्टीमेटली जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं या हाउ डू वी वांट टू फील लव्ड, कि किसी के लिए हमारी प्रेजेंस बस इनफ है, दैट काफी है ना. अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. प्रियांश श्रीवास्तव एंड जुनीदा गांधी की आवाज में है गर्वित प्रियांश. शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम. उनकी कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है काफी है ना. आई नई नवेली एंट्री ऑन द काउंट डाउन फ्रॉम मुसाफिर कैफे. इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: जब फरक ने कहा हमारा ठोकरों से खास नाता है, द एंटायर जेनरेशन फेल्ट इट टुगेदर. फरक की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, दिस सॉन्ग तारे इज माय फेवरेट फ्रॉम द काउंटडाउन. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना संजू राठौड़ का बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On मिर्ची
0: पर. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनेगा. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, हैंडल इज @RJKanega. फॉलो करना बिल्कुल फ्री है. गाने सजेस्ट करती हूँ, बातें बताती हूँ, आपको बातें शेयर करनी है, बिंदास आके हिट मी अप. इट्स टाइम टू पुट अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन अ सॉन्ग जो अभी टॉप 10 गानों में एंट्री नहीं मारा है, पर जिस तरह से जनता इस गाने को प्यार दे रही है, डेफिनेटली इट विल मेक इट द काउंटडाउन. आज के स्पॉटलाइट का गाना इज बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट ऑफ दिस काउंटडाउन ऑफ इंडस्ट्री टुडे. आई एम टॉकिंग अबाउट बंजारे. उनका नया नवेला गाना आया है बरसात. द सॉन्ग कैप्चर्स दैट फीलिंग कि जब आपका ब्रेकअप हो गया या किसी ने आपको छोड़ दिया है, दैट हर्ट्स ऑब्वियसली. बट पता है उससे भी ज्यादा बुरा क्या लगता है? व्हेन वी रियलाइज कि कोई हमसे आगे बढ़ चुका है, वो मूव ऑन कर चुका है. ये गाना एग्जैक्टली वहीं पर है. बट बिफोर वी टॉक अबाउट द सॉन्ग एंड वी लिसन टू द सॉन्ग, लेट्स टॉक अबाउट बंजारे, जिनका गाना बैरन मेरा और आपका दोनों का फेवरेट है. ये पूरा गाना आगे काउंटडाउन में फीचर होने वाला है. बट लेट्स टॉक अबाउट दीज आर्टिस्ट. इट्स अ ब्रदर डुओ कॉल्ड सुमित एंड अनुज, जो कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं, जिन्होंने हरियाणवी म्यूजिक के टूवर्ड सबकी सोच बदल दी. रिच सॉन्ग राइटिंग, वेरी फोक स्टोरी टेलिंग का उनका अंदाज है एंड गानों को इतना होलिस्टिक बनाते हैं दैट यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स द इमोशन जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. एंड सेम वही बात बरसात. इट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, जो एक बंदी फील कर रही है जिसका गम खालीपन इस गाने में आपको जोर जोर से सुनाई देगा. द सॉन्ग गोज थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. पहले तो वो मानती ही नहीं है, दैट इज डिनायल. फिर वो टूट जाती है, दैट्स पेन. फिर उसी गाने के दौरान वो ये बात समझती है कि जो छोड़ के चला गया वो मुड़के नहीं देखने वाला, दैट इज एक्सेप्टेंस. एंड देन उसके बाद शी डिस्कवर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग, जहां वो खुद के सुकून को प्रायोरिटाइज करती है. वो ये बात चुनती है कि अब इस फीलिंग को पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, दैट इज लेटिंग गो. एंड वी ऑल हैव फेल्ट दीज इमोशंस कभी ना कभी किसी के टूवर्ड्स किसी स्टेज पर. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बंजारे आर बैक एट इट अगेन. उनका नया नवेला गाना कॉल्ड बरसात, रीचिंग फॉर अ हार्ट, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट. बंदी का नाम है RJ कनेका. एंजॉय.

0: कितने मेरी।
1: गॉड डैम, आप हरियाणवी नहीं समझते, मैं नहीं समझती हूँ, बट वो फीलिंग ऑफ लेटिंग गो वो पूरी अच्छी तरीके से इस गाने में समझ में आती है। गाने का नाम है बरसात बाय द वन एंड ओनली बंजारे ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट दिस वीक। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम मुसाफिर कैफे। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में, राघव कौशिक का ही म्यूजिक। गाने का नाम है दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: You cannot not groove to this song. Anish Sarkar, Hruday Ka Gaana, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. 11 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. This week on Gaana number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Kanika ke saath on Mirchi.
0: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Mera handle is @RJKanika. The show is all about the hottest pop music of the week. And sometimes, jo gaane hamein achhe lagne hote hai na, hum unhein dhoondne nahi nikle hote hai. Woh bas humare raaste aa jaate hai. Aise hi maine pichle hafte ek gaana suna called Baavre. इट्स वन ऑफ दो सॉन्ग्स जिसको सुनते ही मैंने अपने चार दोस्तों को बोला कि यार ये गाना सुन, बहुत अच्छा लगेगा. तो आई एम गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू, व्हिच इज बेसिकली अबाउट वन साइडेड लव. एंड इतने पोएटिक वे में इन्होंने वन साइडेड लव के बारे में बात करी है. यू नो, वो चांद है, चांद के आसपास एक रोशनी है जो ना उस चांद को छू पाती है ना उसे छोड़ के जा पाती है, बस वो है. उस रोशनी के जरिए यहाँ पर वन साइडेड लव के बारे में बात हुई है. ऑनेस्टली गानों में अच्छा साउंड करता है, आई होप किसी को कभी ना हो. बट प्लॉट ट्विस्ट ये है दैट इस गाने में फीलिंग गहरी है, सोच बहुत गहरी है, बट गाना बिल्कुल भारी नहीं है. इट्स अ ब्रीजी पॉप सॉन्ग, बहुत मेलोडिक रैप है. विकेट सनी ने इसे ऐसे लिखा है कि दर्द छुपता नहीं है पर गाने की फीलिंग आप पर बोझ की तरह भी नहीं आती है. इट्स लाइक अ फील गुड कंपेनियन एंड यू आर एंजॉयिंग इट थोरली एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग. तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. गाने का नाम है बावरे बाय ऋषि रॉय एंड विकेट सनी स्टारिंग कशिश रत्नानी. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: कह दूं जो

0: That was a song called Bavare by Wicked Sunny and Rishi Roy. One of those songs, मुझे पता है अब आप सुन के दो दोस्त को recommend करोगे कि इसको जरूर सुनना. At RJ Cunning on Instagram पर आओ, ऐसे कोई गाने हैं you want me to play next week, हमसे आके share करो. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. 21 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. गाने का नाम है शीशा. मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज, also featuring स्वरा वर्मा. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गाने हम आपके लिए लाते हैं। कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पर @RJKaneka। कोई गाना बताना हो, कोई सजेशन हो, बिंदास आके हिट मी। आप कोई सवाल है, बिल्कुल वी वेलकम इट @RJKaneka पर बताओ। मैं और मेरे प्रोड्यूसर अश्काय, वी टेक योर सजेशन रिकमेंडेशन वेरी वेरी सीरियसली। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: तेरी दीवानी।
1: गाने का नाम है तेरी दीवानी, कैलाश खेर की आवाज में बाय हिज बैंड कॉल्ड कैलासा। साल था 2000 एंड कैलाश खेर की आवाज वॉज द मोस्ट बुलंद आवाज ऑफ दैट ईयर। अब इतनी पुरानी बात लगती है दैट आई वांट टू रियली पिक माय ब्रेन एंड थिंक दैट मैंने क्या सोचा था जब मैंने सबसे पहली बार कैलाश खेर की आवाज सुनी थी, बिकॉज इट साउंड सो अर्दी रॉ, कुछ कच्ची मिट्टी से जुड़ी हुई आवाज है उनकी। एंड दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर। इस गाने की ब्यूटी मुझे ये लगती है दैट हर किसी के लिए तेरी दीवानी गाने का मतलब अलग है। किसी के लिए इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, इश्क वाला, प्यार मोहब्बत वाला, दैट आई एम ऑल अबाउट यू बेब, पर किसी के लिए ये गाना एक इबादत के जैसे है, अ डिवोशनल सॉन्ग। देन देयर आर आल्सो पीपल जिनके लिए एक सूफी गाने की तरह है, जहां प्यार और बंदगी में कोई फासला नहीं होता, जहां आप किसी इंसान को इतना चाहते हो दैट वो उस इंसान की ही इबादत करने लगते हो। यू माइट नॉट अग्री विद किसी और का वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्ट ना, टू ईच देयर ओन। एंड तेरी दीवानगी बाय कैलासा एग्जैक्टली वही गाना है। ये किसी एक बॉक्स में फिट ही नहीं हो सकता है। ये आप अपने दिल टूटने पर भी सुन सकते हो और किसी दिन सुकून ढूंढने के लिए भी। शादी में एक रोमांटिक गाने की तरह भी चल सकता है एंड अकेले कमरे में आंखें बंद करके भी ये गाना अच्छा लगता है। बट व्हाट्स कॉमन अमंगस्ट ऑल दीज थिंग्स इज इस गाने की कॉम्पोजिशन, कैलाश खेर की आवाज एंड व्हाट इट मेक्स यू फील। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, कैलाश खेर की आवाज में कैलासा द बैंड का गाना दिस इज तेरी दीवानी ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: डूड, कैलाश खेर की आवाज में जो दर्द है इन तेरी दीवानी, वो दर्द सीधा कलेजे पे लगता है, दिल नहीं कलेजा। दैट वॉज तेरी दीवानी ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम पर आओ। 90s 2000s के वो गाने जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, हमसे आके शेयर करो। मैं और अशकाय आपके सारे गाने, सारे रिकमेंडेशन को ध्यान से देखते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस हफ्ते के काउंटडाउन में गाना नंबर 2 पर इज हर्ष नुस्सी का गाना साडी सुन। पिछले हफ्ते से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, आई स्वेयर आई एम नॉट इवन किडिंग, पांच भी नहीं, ये गाना पिछले हफ्ते से पूरे 7 पोजीशंस ऊपर उठ के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज येट अगेन बैरन। बंजारे दे आर्टिस्ट का गाना 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, हर्ष नुस्सी का साडी सुन ऑन नंबर 2, बंजारे का बैरन ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: Number 2। हो चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संग जावे, को तकनी च तेरे

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: आजकल फिल्म देखने के बाद सबसे डेंजरस सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, सबसे डेंजरस सवाल है कि मुझे इसे देखना क्यों चाहिए था, क्योंकि ऑडियंस बदल गई है। अब सिर्फ बड़ा स्टार काफी नहीं है, सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं है, सिर्फ VFX का शोर भी काफी नहीं है। कहानी में कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग में चलता रहे। शायद इसलिए हिंदी सिनेमा के बीच का वो खाली स्पेस फिर से भर रहा है। कभी एक पुरानी याद नई आवाज बनकर लौट जाती है, कभी एक छोटी सी कहानी बड़े पर्दे को चैलेंज कर देती है, और कभी बॉलीवुड हमें रोमांस के नाम पर ऐसे ऐसे लॉयल्टी टेस्ट दे रहा है कि हम खुद सोच रहे हैं भाई थेरेपी लेनी पड़ेगी क्या। तो इस हफ्ते फिर देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या टिक रहा है, और सबसे जरूरी क्या याद रह रहा है। हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी किक स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है गाना नंबर 20, राघव जुयाल की भाई तेरा स्टार है का ट्रैक बाय अमित त्रिवेदी। This is Rangbar Se.
3: Number 20.

शायद 2026 में धुरंधर एक गहरी याद बन के रह जाए, लेकिन जब मेरी जेनरेशन थोड़ी केयरफ्री थी और जिम्मेदारियां उतनी भारी नहीं फील होती थी, तब भी एक याद थी। तीन दोस्त, एक गाड़ी और स्पेन की सड़कें, और सामने पूरी जिंदगी। 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने हमें यही तस्वीर दी थी। अर्जुन को समंदर में उतरना था, इमरान को अपने अंदर का डर खत्म करना था, और कबीर को अपनी जिंदगी का फैसला करना था। और हम सिनेमा हॉल से निकले तो लगा कि हाँ यार, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। फिर 15 साल निकल गए। वो तीन दोस्त तो स्क्रीन पर कहीं रुक गए, लेकिन हम नहीं रुके। हमारे बाल बदले, चेहरे बदले, दोस्तियों के बीच नए नाम आ गए, कुछ लोग शादी तक पहुंच गए, कुछ सपने रस्ते में रह गए। और शायद इसलिए अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल कभी आता भी है तो मुझे यार स्पेन की एक और रोड ट्रिप नहीं चाहिए। मुझे देखना है कि उन तीन दोस्तों के साथ जिंदगी ने क्या किया, क्योंकि पहली फिल्म में तो वो जिंदगी को ढूंढने निकले थे, लेकिन अब शायद जिंदगी उन्हें ढूंढने आ गई है। नंबर 18 पर है चटनी धमाल 4 से, बट जिस ट्रिप पर निकले हैं उसे पूरा करते हैं। वो ट्रिप इसकी हवा आज भी चलती है, ख्वाबों के परिंदे। शायद इस बार हम स्पेन नहीं देख रहे, शायद हम खुद को पीछे मुड़कर देख रहे हैं।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 Mirchi, it's hot. Sureen ke saath only on Mirchi, it's hot. Number 11.

0: माशूका, एक ऐसा गाना जो सुनते ही बॉलीवुड रोमांस की पुरानी आदत याद आ जाती है। लेकिन कुछ फिल्म्स की आदत नहीं होती, उनसे उम्मीद होती है। कुछ महीनों पहले जावेद अख्तर साहब ने बंटवारा 1947 को लेकर एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर एक्सपेक्टेशंस सीधा आसमान तक पहुंच गए थे।
1: एक प्रेडिक्शन में करना चाहता हूं, आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट, इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर दैट पिक्चर इज नॉट ट्रू। मैं आपको बताता हूं, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं, मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूं तो सलाम करने आइएगा।
0: अब जरा सोचिए, आमिर खान एज प्रोड्यूसर, राजकुमार संतोषी डायरेक्टिंग अ फिल्म आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा एज द कास्ट, जावेद साहब के लिरिक्स और एआर रहमान का म्यूजिक। यार ये कॉम्बिनेशन फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है। और फिर वो फिल्म आती है और उसका म्यूजिक भी आता है, और एक अजीब सी चीज होती है, कुछ भी पीछा नहीं करता। ना वो एक मुखड़ा जो दिमाग में अटक जाए, ना वो एक लाइन जो आप किसी दोस्त को भेजें, ना वो एक गाना जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ घर आए। और मुझे इसलिए हैरानी नहीं है कि बंटवारा 1947 का कोई गाना एक सुपरहिट गाना नहीं बना, या शायद मिर्ची टॉप 20 पर नहीं आया। मुझे हैरानी है कि एआर रहमान और जावेद अख्तर की फिल्मोग्राफी से निकला हुआ एक भी गाना अभी तक मेरी यादों में जगह नहीं बना पाया। हो सकता है कि वक्त बदले, हो सकता है दैट दिस एल्बम ग्रोज ऑन मी, हो सकता है कि कोई गाना धीरे धीरे अपना रास्ता बना ले, लेकिन तब तक मैं उस एक गाने का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग। और जब बात आमिर खान और एआर रहमान की हो, तो एक वक्त था जब दोनों ने ऐसे गाने दिए थे जो आज भी बिना किसी इंट्रोडक्शन के दिल में उतर जाते हैं। माय रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स एवर, तू बिन बताए, रंग दे बसंती से।
2: टॉप 20 रीवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। नंबर 4।

16 साल से रिलेशनशिप में हो, साथ रहते हो, खुश हो, शादी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। एंड फिर बॉलीवुड कहता है एक काम करते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने ही बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए कन्विंस करते हैं, लॉयल्टी टेस्ट करवाते हैं। वेलकम टू कॉकटेल 2 विथ रश्मिका मंदाना एज दिया, कृति सैनन एज एली एंड शाहिद कपूर एज कुणाल। एंड ऑनेस्टली दिया, 2026 है, थेरेपी नाम की भी एक चीज होती है। लेकिन कॉकटेल 2 का प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि इसकी असली लव स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड को कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक के बीच का फर्क आता ही नहीं है। They forgotten about it. Jealousy को पैशन बना दिया है, possessiveness को प्यार, stalking को persistence और manipulation को relationship test. कभी कभी cheating को भी true love कह दिया जाता है। और हम देखते रहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर दो खूबसूरत लोग अगर खड़े हो, बैकग्राउंड में एक बड़ा सा रोमांटिक गाना बज रहा हो, तो हम हर रेड फ्लैग को गुलाबी चश्मों से देखते हैं। लेकिन शायद रोमांस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको कंफ्यूज करता रहे। रोमांस शायद वही है जहां आपको टेस्ट देने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर 16 साल बाद भी अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है, तो प्रॉब्लम लव ट्राइंगल में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है और आपके रिलेशनशिप में। एंड दैट इज वॉट कॉकटेल 2 ट्राइड टू एक्सप्लोर व्हेन आई वॉच्ड इट ऑन OTT। यार बॉलीवुड को भी शायद अब ये समझ लेना चाहिए दैट ऑडियंस रोम कॉम्स चाहती है, टॉक्स कॉम्स नहीं।

don't want toxic love. But from toxic love, I want to play sweet, innocent love. बर्फी नाम की फिल्म, उसका एक गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में, आशिया. It's my special request of the week.

0: कुछ आवाजें चार्ट्स पर नहीं आती हैं, चार्ट्स को अपना घर बना लेती हैं। एंड गहरा हुआ ने इतने हफ्तों से कुछ ऐसा ही किया, लेकिन आज बहुत वक्त बाद उसकी जगह कोई और आ गया है। गाना बेशक अलग है लेकिन आवाज वही है, अरिजीत सिंह। लेकिन इस बार वो एक नए गाने के साथ नहीं, एक पुरानी याद के साथ लौटे हैं। आवारापन, एक फिल्म जो 2007 में आई थी, जिसके गाने हमने MP3 प्लेयर्स में भरे, आईपॉड्स में संभाले, फोन बदलते रहे, लेकिन गाने नहीं बदले। तो फिर आओ तेरा मेरा रिश्ता, और इतने सालों बाद सवाल यही था, आवारापन का दर्द दोबारा कैसे लिखोगे यार। अवाल मलिक के सामने मुश्किल गाना बनाना नहीं था, मुश्किल था एक याद बनाना, और उस याद के लिए अमाल को एक आवाज चाहिए थी।
1: आप इनिशियली अरिजीत के फर्स्ट 3-4-5 इयर्स में आप हो सकता था कि आप कोई भी गाना दे दो अरिजीत के नाम से चल जाए, अब वैसा नहीं होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है। गेट द बिगेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री ऑल्सो, अरिजीत सिंह ले लो, आप सोनू निगम ले लो, अगर गाने में बात नहीं है तो आप इतना ही विंडो तक उसको संभाल के बचा के प्रमोट करके यू कैन सेव इट। बट इफ इट इज गोइंग टू बी हर्ड एंड लव्ड एंड ऑल, तो सिंगर का भी हार्ट होना चाहिए, कंपोजर का भी हार्ट होना चाहिए, लिरिक्स राइटर सबका एक साथ में वो एनर्जी से गाना बनता। सो व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग, इट वॉज नथिंग कि उसने कोई पहले प्रोमिस किया या हम लोग की कोई डील थी, यू नो पीपल ऑलवेज थिंक अच्छा कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना अब रिलीज हो गया। So since a year, it has been in my voice. Someone comes once in an era and becomes an Arijit Singh. Not everyone has the skill set also. Not everyone has the blessing of God also. And not everyone has the heart also like him to step away in the prime. Yani he himself also used to tell, इस गाने के लिए भी उसने मेरे लिए लड़ाई की है, उसने बोला है सबको, अरे अमल ने इतना अच्छा गाया है मुझे क्यों गवा रहे। तो मैंने बोला ऐसा मुझे चाहिए। I said, इन लोग किसी की भी नहीं है, सर मेरी रिक्वायरमेंट है दैट यू एटलीस्ट सी इफ यू लाइक द सॉन्ग, पूरा बन गया चेक इट आउट। सो इट वॉज जस्ट अबाउट 3-4 मंथ्स बिफोर अभी दैट सॉन्ग केम दैट ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड रिविजिटेड द सॉन्ग 2-3 टाइम्स।
0: और आज गहरा हुआ को पीछे छोड़कर वही आवाज फिर से नंबर 1 बन गई है। दिस इज ये आवारापन, the new undisputed number 1 song on the Mirchi Top 20.

0: ये आवारापन मिर्ची डॉट 20 को एक नई जगह पहुंचा दिया इसने, और शायद इसलिए गाने इतने कमाल के होते हैं। कुछ सिर्फ चार्ट्स पर ऊपर जाते हैं और कुछ सीधा दिल और दिमाग में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वेल, दिस एपिसोड इज डन, लेकिन मैं वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।
2: अकड़ी पकड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिका दिक्कड़ी दिक्का दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिकीरो दिकीरो दिकीरो
3: दिकीरो दिकीरो।
4: Good job.

0: Mirchi. It's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले

Mirchi, it's hot. Saathi re, thoda theher ja, abhi raaste

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ाए ओए

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बजा।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी?
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए मिर्ची मॉर्निंग्स विच हैज ऑफिशियली बिगन। या फिर सफे में किसी के शोल्डर पे एक्सीडेंटली हार्ड रेस्ट बना रहे हो या किचन में परौंठे सेकते सेकते लाइफ के डिसीजंस रीथिंक कर रहे हो, आई हैव गॉट यू एंड आई हैव गॉट यू फॉर अ फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ बिकॉज मॉर्निंग्स आर बेसिकली लाइक मसाला डोसा। जितना बाहर से क्रिस्पी होगा उतना ही अंदर से स्टफी होगा और स्टफ करने के लिए मेरे पास है बॉलीवुड के गाने, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन एट ऑल। सुबह सुबह मिर्ची पर एकदम क्लियर एंड क्रिस्पी होती है, तो वॉल्यूम को, मूड को, स्माइल को चढ़ा लो, अपने दिन को मिर्चीदार बना लो। आज का मिशन है नो टेंशन एट ऑल, गुड म्यूजिक, गुड वाइब्स एंड बहुत सारी बातों के साथ आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स टू मिर्चीफाई योर डे विद मी प्रिसिला। फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर लो, मेरे पास एक कॉन्टेस्ट भी है तुम्हारे लिए, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर अगर कॉन्टेक्ट करना है तो 9033 मिर्ची, दैट्स माई नंबर 9033647244। अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स कमिंग अप योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर वेदर चेक। बिकॉज आउटफिट चूज करने से पहले वेदर का मूड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हम देसी पीपल का स्वैग ही खत्म हो जाता है। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट अ सनी 62 डिग्रीज फारेनहाइट, बट फील्स मोर लाइक 64 डिग्रीज फारेनहाइट, यानी कि वेदर जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर बोनस में दे रहा है। आज का टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं, 62 से लेकर 83 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, विद द फील्स लाइक टेम्परेचर गोइंग फ्रॉम 60 to 85 degrees Fahrenheit. और रेन के 0 मिलीमीटर्स के चांसेस हैं, जस्ट लाइक इन द लास्ट 24 आवर्स 0 मिलीमीटर्स इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स एज वेल। अराउंड 4 से 5 बजे शाम को पार्टली क्लाउडी स्काइज होने वाला है, एंड बाय 5 पीएम मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस हो जाएंगी। हाई आज जाने वाला है 83 डिग्रीज फारेनहाइट तक, ऑलमोस्ट सिमिलर टू येस्टरडे। कल का टेम्परेचर मैक्स आउट हुआ था 79 डिग्रीज फारेनहाइट पर। और वेदर के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट जानकारी लेते जाओ, मिर्ची करेगा बंधन। पूरा चल रहा है टेस्ट मिर्ची पर, ब्रॉट टू यू बाय नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ, जिसमें तुम जीत सकते हो नानक फूड्स की तरफ से अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स। और अगर जीतना चाहते हो तो फटाफट से अभी के भी व्हाट्सएप खोलो, टाइप करो RAKHI राखी एंड सेंड इट टू 9033 मिर्ची, यानी कि 9033647244। तो मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टा पर, और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं वहां पर 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर, विजिट करो WiraniJewelers.com पर। एंड वाइल यू आर रजिस्टरिंग फॉर द कॉन्टेस्ट, लेट मी प्ले सम मिर्चीदार बैंगर्स फॉर यू ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Mirchi, it's hot.

Time for updates from around the world with me, Priscilla, only on Mirchi Mornings. Mirchi Hour Gun 3. सबसे पहले द स्टेट डिपार्टमेंट हैज टेम्पररली पॉज इमिग्रेशन वीजा इंटरव्यूज वर्ल्ड वाइड व्हाइल कॉन्सुलर ऑफिसर्स अंडरगो ट्रेनिंग ऑन एनहांस्ड एप्लीकेंट स्क्रीनिंग सम एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग इन इंडिया हैव रिसीव्ड कैंसिलेशन नोटिसेस एंड देयर इज करंटली नो क्लियर रीस्टार्ट डेट एंड फॉर दोज जिनका इंटरव्यू ऑलरेडी स्केड्यूल्ड था फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट अज्यूम योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स हुज इंटरव्यूज आर अफेक्टेड हैव बीन नोटिफाइड दैट अपॉइंटमेंट्स आर बीइंग कैंसल्ड और रीस्केड्यूल्ड एंड they'll be given information about a new date. So, अपनी email check करते रहिए, official updates follow कीजिए and जब तक नई date confirm ना हो, non-refundable flights या travel plans मत बनाइए. Number 2 पर नेपाल से devastating खबर आ रही है. नेपाल के रसुआ region में severe flash flooding के बाद hundreds of travelers are reported missing, including 105 Indian nationals. Rescue and verification efforts are underway. It's a developing situation, so families should rely on official updates rather than unverified social media posts. Sending our thoughts and prayers to everyone affected. And lastly, country music icon Dolly Parton has died at 80 following a brief battle with cancer. From Jolene to I Will Always Love You, she gave generations unforgettable music, plus a legacy of philanthropy and literacy work. A true original icon. And that's your Mirchi Hour Gun 3. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp का नंबर 9033647244. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और बॉलीवुड से आ रही काफी इंटरेस्टिंग थिएटर अपडेट्स। यश स्टार और टॉक्सिक के मेकर्स ने ग्लोबली थिएटर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि साउंड जो है 5.0 से नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वाई? फिल्म का फाइनल साउंड मिक्स एक स्पेसिफिक डॉल्बी प्रोसेसर सेटिंग पर क्रिएट किया गया है और मेकर्स का कहना है कि अगर वॉल्यूम 5.0 से नीचे गया तो डायलॉग की क्लैरिटी इफेक्ट हो सकती है। मतलब कि थिएटर वालों को बेसिकली बोला गया है वॉल्यूम कम किया तो डायलॉग तुमसे नाराज हो जाएगा। ऑफ कोर्स फिल्म को अभी तक रिव्यूज काफी मिक्स्ड टू नेगेटिव मिले हैं, लेकिन अगर तुम मूवी देखने जा रहे हो एटलीस्ट डायलॉग क्लियरली सुनाई देने चाहिए, वरना ऐसे लोग जो पास में बैठते हैं ना पूछते रहते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वैसे लोगों के साथ बड़ा इरिटेशन होने लगेगा। और वैसे भी नेगेटिव पब्लिसिटी से कहां कोई मूवी फ्लॉप हुई है बॉलीवुड में। फॉर एग्जाम्पल कबीर सिंह एंड एनिमल। और अब बॉलीवुड हीरो से चलते हैं हीरो की तरफ। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, जहां पर तुम्हें मिल रहा है 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड डायमंड की मेकिंग charges. And if you've got old gold sitting in your drawer somewhere doing absolutely nothing, maybe it's time to give it a Bollywood level ka makeover. Lekar jao Tanishq par, exchange karao 0% deduction par. Of course, terms and conditions are applied. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Follow karo mujhe Instagram aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: अभी मेरे साथ में कौन है लाइन पर, लेट्स फाइंड आउट। हेलो,
2: हाय, माय नेम इज संध्या, हाउ आर यू प्रिसिला?
1: हाय संध्या, आई एम गुड, हैप्पी राखी टू यू संध्या।
2: हैप्पी राखी टू यू टू। माय ब्रदर इज नॉट हियर, बट ही वाज हियर अ मंथ बिफोर एंड वी हैड अ गुड टाइम, दैट आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। या बट फॉर माय मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड इज लाइक माय बुआ यूज्ड टू कम, माय सिस्टर, ओल्डर सिस्टर्स यूज्ड टू कम, एंड यू नो वी ऑल यूज्ड टू कम टुगेदर, लाइक you know, like we used to sit together and put rakhis on my brother. Hmm. And then we used to get like, you know, all those karare note. Oh. They used to get from bank. We used to eat those ghevar.
1: Aur abhi kaise change ho gaya rakhi ka festival aapke liye?
2: Well, abhi to sirf we just order online and then they get it and then they, you know, video call and then we just, you know, just say happy rakhi to them. So yeah, we miss those days. Yeah.
1: Okay. And that's kind of the sad reality of life. कि अभी बहुत सारे भाई बहन दूर दूर रहते हैं तो राखी उस तरह से नहीं मना पाते जैसे इंडिया में मनाते थे।
2: एग्जैक्टली, या वी हैव यू नो वी हैव वी इंडियंस एंड वी मेक रिलेशंस सो क्विकली यू नो विद, सो वी मेड सम ब्रदर ओवर हियर टू एंड वी डू सेलिब्रेट विद देम।
0: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स

0: चलो पता करते हैं गोल्ड का क्या हाल चाल है। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग।
1: rajjewels.com wishes everyone happy and healthy morning and happy onam to all। जितने दोस्त हमारे ओनम सेलिब्रेट करते हैं उनको ओनम की बहुत बहुत शुभकामनाएं राज ज्वेल्स की टीम के साथ। आज गोल्ड फॉर 620 4620 डॉलर पट रहे हैं, उस ट्रेड कर रहा है। और जैसा ओनम के दिन हम चाहते हैं कि अपने लव्ड वंस के लिए कोई खूबसूरत सा तोहफा लेके जाएं, राज ज्वेल्स के पास 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी एंड 18 कैरेट कलर्स डायमंड ज्वेलरी, खूबसूरत से खूबसूरत डिजाइन एंड वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। ट्रांसपेरेंसी के साथ आप समझ सकते हैं कि कितने परसेंट ऑफ गोल्ड के चार्ज पे आप मेकिंग पे कर रहे हैं एंड शिप करा सकते हैं टू एनी लव्ड वंस विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। आइए rajjewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी ओनम टू ऑल।
0: एंड देयर यू गो, गोल्ड का अपडेटेड रेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसला, कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे होम।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

0: पानी पानी
1: इमेज खराब काम गलत न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तुम मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

Good morning, guys. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, and it's time for your daily dose of updates from around the world. सबसे पहले न्यूयॉर्क मेयर ज़ोरान ममदानी वॉज आस्क्ड अबाउट एन आरएसएस चीफ मोहन भागवत इवेंट एट मैडिसन स्क्वायर गार्डन. ममदानी सेड ही डजंट सपोर्ट द रैली बट क्वेश्चन वेदर द सिटी हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू कैंसल अ प्राइवेट इवेंट. ही ऑल्सो स्पोक अबाउट हिज फैमिलीज कनेक्शन टू इंडिया एंड द सेक्युलर रिपब्लिक ही वॉज टॉट अबाउट. नंबर टू पर अ ज्वेलरी ब्रांड हैज विथड्रॉन इट्स रक्षाबंधन एड फीचरिंग कृति सैनन आफ्टर बैकलैश ओवर हर आउटफिट एंड अ सीन वेयर शी टाइज अ राखी टू a dog. The brand said it respects Indian culture and didn't intend to hurt sentiments. Kriti defended the ad saying culture and tradition are in a woman's heart, not in her neckline. And lastly, OpenAI CEO Sam Altman reportedly commissioned just 7 custom watches featuring the OpenAI logo, the words compute is destiny, and even a Python inscription on the back. And the price? The model starts around $180,000. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Follow me Instagram and X par. Mera handle hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot. Such a

तेरा चले तू ले ले पूरा दिन हो तैयार तू घंटे न गिन मैं हूँ यही एक्स्ट्रा सर्विस टेक योर टाइम शॉर्टी यू डिजर्व इट हाथ मेरा थाम लेट मी मेक यू स्माइल आई लाइक योर स्वैग यू लाइक माय स्टाइल दे

0: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है लाइन पर। हेलो,
2: हाय,
1: व्हाट्स योर नेम?
2: शीतल।
1: हाय शीतल, हाउ आर यू?
2: गुड
1: शीतल, हैप्पी राखी टू यू।
2: सेम टू यू।
1: क्या चल रहा है, राखी की तैयारी कैसे चल रही है?
2: बहुत अच्छे से चल रही है। राखी के दिन हम सभी भाई और सिस्टर जाने वाले है मेरे भैया के घर, फ्राइडे को ही। इस बार हम फ्राइडे को ही जाने वाले है क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे है। तो
1: ग्रेट, कौन कौन होने वाला है, उनके नाम बताइए, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो आप?
2: हाँ। मेरा भाई अभी स्टोर पे है, मैं उसको बोलना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। सो बड़ी दीदी है वर्षा दीदी, छोटी दीदी है नैना दीदी, बहन का दो बेटी है वो अमी कृष्णा, और उसके हस्बैंड और उसके भी दो बच्चे है वो भी आने वाले है। दूसरी सिस्टर है उसके भी तीन बच्चे है, तो दो ब्रदर है और बेटे है और एक बेटी है। हर साल हम लोग राखी की थाली को सजाते हैं और भाई की आरती करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर अच्छा सा खाना हम लोग मेरी मम्मी लोग बनाते हैं, फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं। और लेकिन मेरा भाई छोटा था है वो तो बहुत नटखट है।
0: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life. In association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit ViraniJewelers.com.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स और आप सुनने वाले हो आज का राशि जोन।
1: मिर्ची राशि जोन
0: इरेज यानी कि मेष राशि, वर्क रूटीन में आज प्रोग्रेस दिखाई देगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आए तो स्माइल रखो बरकरार, बिकॉज अपेरेंटली स्माइल इज फ्री। लकी कलर फॉर यू इज क्रिमजन, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, जुपिटर और मून ऑप्टिमिज्म का बूस्ट दे रहे हैं, बस अनवांटेड थॉट्स को माइंड में परमानेंट एयरबीएनबी में मत डाल दो, रिलैक्स करो, ब्रीथ करो, मूव ऑन करो। लकी कलर इज मिंट ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज थोड़ा सा कॉशन रखना, डिस्ट्रैक्शन छोटी मिस्टेक्स या वर्क आउट ला सकते हैं। मल्टीटास्किंग के चक्कर में 17 टैब्स ओपन मत कर देना ब्रेन में। लकी कलर इज स्काई ब्लू, लकी नंबर इज 21। कैंसर यानी कर्क राशि, यू आर अंडर अ लकी स्पेल ऑफ होप एंड वार्मथ, कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहेगी और एक सिंपल जेस्चर भी स्पेशल मेमोरी बन सकता है। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 9। लियो यानी कि सिंह राशि, करिश्मा फुल वॉल्यूम पे है, सोशल और प्रोफेशनल सिचुएशन में सक्सेस मिल सकती है, बट अपने फेवरेट लोगों के लिए टाइम निकालना जरूरी है, सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी रिप्लाई करना इनफ नहीं होगा। लकी कलर इज मैरी गोल्ड, लकी नंबर इज 3। वगो यानी कन्या राशि, लर्निंग फोकस और कोलैबोरेशन के लिए आज का डे की है। सक्सेस आज लक से नहीं, कंसंट्रेटेड एफर्ट्स और टाइमली डिसीजन से मिलेगी, सो ओवरथिंकिंग को मीटिंग से पोलाइटली बाहर भेजो। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 18। लीब्रो यानी कि तुला राशि, मेंटल स्ट्रेस फाइनली थोड़ा सा हल्का होगा, वार्म कन्वर्सेशंस एंड गुड कंपनी ब्रिंग जेन्युइन जॉय। आज किसी अपने के साथ चाय और गॉसिप साइंटिफिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली रिकमेंडेड। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, फ्रेंड्स कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड स्मार्ट आइडियाज को आज फाइनेंशियल गेन में टर्न करने का चांस है, स्पेशली थ्रू स्टेडी टीम वर्क। सोलो हीरो बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, फैमिली या किड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्ट्रेस मेल्ट करेगा, लेकिन प्लीज रशिंग से बचना, आज थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन वाइब है, मतलब कि स्टेयर्स को फास्ट एंड फ्यूरियस ट्रैक मत समझना। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 8। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, मून एंड वीनस करियर और फाइनेंसेस को स्पॉटलाइट में ला रहे हैं, पर्सनल बिलोंगिंग्स संभाल के रखो और इम्पल्सिव शॉपिंग से बचो, सेल देकर वॉलेट को आल हैंडल दिस मत बोल देना। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 16। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, मून एंड प्लूटो इमोशंस को इंटेंस बना सकते हैं, स्पेशली अराउंड वन बिग मिशन। Stay optimistic, surprise invitations could be coming your way. बस invite को accept करने से पहले location जरूर check कर लेना। Lucky color is electric blue, lucky number is 24. And last but not the least, Pisces यानी कि मीन राशि, financial gains का outlook strong है, लेकिन professional conversation में caution बनाए रखो, love में trust grow करेगा, बस unnecessary arguments को mute कर देना, हर बात का courtroom hearing जरूरी नहीं होता। Lucky color is sea green, lucky number is 5. And that was your Rashi zone for today. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

प्रिसिला तुम्हारे साथ में सुन रहे तुम मिर्ची मॉर्निंग्स एंड जस्ट लाइक दैट अब मेरा रैप अप का टाइम शुरू हो चुका है. थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी. लेकिन बिफोर आई लेट यू गो एंड बिफोर आई गो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट तो बनता है यार. नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है मिर्ची पर. रक्षा बंधन स्पेशल कॉन्टेस्ट है. अगर तुम जीतना चाहते हो नानक फूड्स की तरफ से अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स तो पार्टिसिपेट करने के लिए फटाफट से व्हाट्सएप करो राखी RAKHI और उसे भेज दो 9033 मिर्ची पर. That's 9033647244. या फिर तुम मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. That is MIRCHIPRIS in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road जहां पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी के. विजिट करो ViraniJewelers.com. And to everyone celebrating Onam, happy Onam. May your day be filled with happiness, prosperity, delicious food and a proper sadhya. Or obviously one extra serving of the payasam because calories don't count during festivals. Main hoon Prisila signing off from Mirchi Mornings. Keep smiling, keep it desi. And remember, stay tuned and stay hot.

0: सुबह सुबह का टाइम हुआ करता था और स्कूल बस में सब चुप होते थे। क्यों? क्योंकि स्कूल असेंबली के लिए न्यूज़ जो ढूंढनी होती थी।
1: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirji. और हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसा भी तो एक टाइम हुआ करता था यार। आज की मॉर्निंग्स हम कहते हैं कि वी मस्ट गो स्लो, आराम से कॉफी इंजॉय करो एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन बचपन की मॉर्निंग्स हमारी बहुत तूफानी हुआ करती थी यार। भागम भाग में तैयार होना, भागम भाग में नाश्ता करना, भागम भाग में बस पकड़ना, और फिर फाइनली जब बस में बैठ जाते थे तो सब शांत। क्यों? क्योंकि हम सब ना न्यूज लिख रहे होते थे। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में ऐसा होता था कि नहीं होता था, लेकिन हमारे स्कूल में डेफिनेटली होता था कि यार हम सबको ना एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो डायरी हमेशा हमारी पॉकेट्स में रहा करती थी, एंड उस डायरी के अंदर रोज सुबह हमें न्यूज लिखकर ले जानी होती थी स्कूल, ताकि असेंबली में अगर अचानचूक किसी को बुला लिया जाए, जो कि होता भी था हमारे साथ, हमें न्यूज बोलनी आनी चाहिए ऑन द स्टेज। और इसीलिए सब अपने आप को बचाते हुए हर रोज सुबह बस के अंदर न्यूज ही लिख रहे होते थे, एक नेशनल, एक इंटरनेशनल और एक लोकल। तब ना ये सिस्टम बहुत बोर लगा करता था, बहुत चिढ़ होती थी, और दिमाग यही कह रहा होता था कि यार ये रोज सुबह क्या क्या टंडे लगाने पड़ते हैं यार, न्यूज़पेपर घर से लेकर आओ और फिर बस में बैठ के न्यूज टीपो। हमारे घर में ना दो न्यूज़पेपर आते थे इसी चक्कर में, एक जो मैं स्कूल लेकर जा पाऊं जब मुझे न्यूज लिखनी होती थी बस के अंदर, और दूसरा जो घर पे रह जाए ताकि बड़े पढ़ पाए। लेकिन ये जो चिड़न कुड़न बलन थी ना, और जो बोरियत होती थी इन सारे कामों को करते हुए, आज समझ आ रहा है कि ये अच्छी चीज थी यार। जो न्यूज अपडेट रखने की आदत मुझे आज है ना, वो यहीं से तो आई है। वैसे ना लाइफ में और भी ऐसी कई सारी आदतें हैं जो हमें तब तो बहुत ही इरिटेटिंग लगा करती थी, क्योंकि तब करना पड़ता था क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन आज जब वो हमारी लाइफ में एक अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है और डिसिप्लिन लेकर आ रही है ना, तो लगता है कि हाँ यार कुछ आदतें अच्छी होती हैं। बताऊंगी आपको थोड़ी देर में उन आदतों के बारे में, लेकिन अभी के लिए मिड मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालने की बारी आ चुकी है। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: रात में कपड़े प्रेस करके बैग जमा के सारी तैयारी करके सोना, ये हमारी बचपन की आदत थी। और जब रात में ये सारे काम करने पड़ते थे ना, आधी नींदों में थके हुए होते थे फिर भी, क्योंकि अगले दिन स्कूल है, तो बहुत आलस आता था यार। मम्मा इतना बोल बोल के पुश कर करके हमसे काम करवाती थी ताकि अगली सुबह हम स्कूल जाने के लिए लेट ना हो जाए। लेकिन ये आदत ना आज बड़ी अच्छी लगती है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और बचपन की कुछ आदतें जो तब तो हमें लगता था कि बड़ी फोर्स्ड है, हम बड़े बेमन से किया करते थे, लेकिन आज लगता है कि यार अच्छा हुआ जो ये सब सीख गए, काम में आ रही है। उनमें से एक यही है, रात में सुबह की तैयारी करके रख लेना सारे कामों की। और उसमें से स्पेशली कपड़े प्रेस करने वाली जो आदत थी हमारी, ये बड़ी सही काम आ रही है यार आज के टाइम पर। मतलब मैं तो अब उन लोगों को भी बड़ा प्रेस करती हूँ जो मैं तो कर ही रही हूँ लेकिन खुद भी इस आदत को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे लोग इस आदत को भूल भी जाते हैं। लेकिन आज भी जो लोग इस आदत पर अपना पूरा ध्यान फरमाते हैं वो

ना ये बड़ा डिसिप्लिन्ड है। सो जो कहाँ की चीज कहाँ जोड़ के हम इंसान की पर्सनालिटी ट्रेट निकाल लेते हैं कि ये इंसान डिसिप्लिन्ड है क्योंकि ये रात में अपने कपड़े प्रेस करके सोता है। और हाँ ये बात सच्ची है कि मुझे वो लड़की पसंद है जो रात में अपने सुबह की तैयारी कर लेते हैं। इनफैक्ट पता है आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि अगली सुबह की जब तैयारी कर रही होती हूँ ना, रात में अपने कपड़े वपड़े प्रेस करके रख रही होती हूँ, तो ऐसा फील आ रहा होता है जैसे कि स्कूल की तैयारी कर रही हूँ। आज तक ये फील कभी नहीं आया है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे ऑफिस जाने की या कहीं बाहर जाने की तैयारी करनी पड़ रही है। आज भी स्कूल वाला ही फील आ रहा होता है, जो फील शायद आपको भी समझ आए, जो सुबह भी आता है। अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपनी रूटीन से पहले सुबह सुबह उठ जाते हैं किसी काम के चलते, तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल जाने के लिए उठे। यू कैन टेक द किड आउट ऑफ द स्कूल, लेकिन यू कैन नॉट टेक द स्कूल आउट ऑफ दैट किड जो आज भी हमारे अंदर कहीं बसा हुआ है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आजकल जो हम हमेशा अपने साथ एक बॉटल रखते हैं कैरी करते हुए, हमें लगता है कि हम बॉलीवुड को कॉपी कर रहे हैं। नो वेज, ये आदत हमारे बचपन की है।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये आदत हमने स्कूल से सीखी है यार, जब रोज बॉटल भरकर ले जाना हमारे लिए लाजमी हुआ करता था। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा लगता था कि यार ये बॉटल और कैरी करनी पड़ती है, क्योंकि वो लटकाने वाली बॉटल होती थी, कैरी करने वाली बॉटल नहीं हुआ करती थी। हमेशा एक बॉटल हमारे गले में लटकी रहती थी, कंधे पे लटकी रहती थी, या कैसे भी करके उसे हमें कैरी तो करना ही होता था। तब बड़ा जोर आता था, लेकिन अब लगता है कि यार ये जो स्किन के हाइड्रेशन के लिए आदत पड़ी है ना, ये बड़ी सही पड़ी है यार। हमें लग रहा होता है कि हमने बॉलीवुड से ये सारी चीजें सीखी हैं, लेकिन नहीं बाबा, हमने ये आदत जो है ये बचपन में ही सीख ली थी। टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड स्कूल में टीचर्स कब से कहा करती थी यार। और अब जो हमें ये बोझ नहीं लगता है ना कि हमें बॉटल भी कैरी करनी है, वो इसी वजह से, क्योंकि बचपन में हम इसके ऑलरेडी आदि और इत्यादि हो गए थे। बॉलीवुड ने सिर्फ और सिर्फ इन बॉटल्स को थोड़ा फैंसी कर दिया है, लेकिन ये जो आदत है ना, इसका क्रेडिट बॉलीवुड को नहीं दे सकते बॉस, बचपन को देना जरूरी है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। It's hot.

0: ये जादू नहीं है तो और क्या है यार, मतलब वाकई में छोटी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं, लेकिन ये जो छोटी रातें लंबी होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में नहीं होती हैं, ये एक्साइटमेंट में भी छोटी रातें जो है वो लंबी हो जाती हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें ट्रैवल करना होता है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है ना, तो अगली सुबह के चक्कर में हम रात भर नहीं सो पा रहे होते हैं और वो रात जो है वो अपने आप लंबी हो जाती है। या तो एक्साइटमेंट होता है या तो एन्जाइटी होती है, और मुझे तो कभी कभी दोनों ही होता है, और उस चक्कर में मेरी भी छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि मुझे मोहब्बत है, लेकिन नहीं, आई एम नॉट कैचिंग फीलिंग्स, आई एम जस्ट अबाउट टू कैच अ फ्लाइट। दैट्स द रीजन कि मेरी छोटी रात लंबी हो गई है।
1: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अब मेरे यारा, मान ना मान करो गानों की पहचान। दो गानों के मिक्सेस को आपके लिए चला देती हूँ, आपको सुना देती हूँ, और आपको बताना होता है कि ये जो दो धुनें आपने सुनी कौन से गानों की है। तो आज का जो मिक्स है वो है कुछ यूं। बस जी, अब आपको डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और बता देना है कि इन दो गानों के नाम क्या हैं। और स्टे ट्यून रहिएगा विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नो एंट्री एक ऐसी फिल्म जिसका नाम तो नो एंट्री था, लेकिन सबको इस फिल्म को देखने के लिए एंट्री चाहिए थी।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म इतनी मजाकिया और इतनी मजेदार थी ना, मतलब जिंदगी में कुछ भी बवाल चल रहा हो, इस फिल्म को देखते देखते सबने अपनी हंसी निकाली और उस बवाल को उस हंसी में उड़ा दिया है। लेकिन आपको इस फिल्म में वो वाला सीन तो डेफिनेटली याद होगा जहाँ पर फरदीन खान, अनिल कपूर एंड सलमान खान एक ही क्लिप से लटक गए थे एक के बाद एक। ओरे बाप रे बाप, मतलब दिस सीन इज अ मिक्स ऑफ एंजाइटी एंड ह्यूमर। मुझे भी एंजाइटी हो रही थी इस चीज को लेकर कि ये कहीं गिर ना जाए यार, और ह्यूमर भी इतना था यार इस सीन के अंदर कि थोड़ी देर के लिए टेंशन लेने के बाद मैं हंसने लग जाया करती थी कि यार ये क्या ही कर रहे हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स की बात ये है कि ये सीन जितना मजाकिया देखने में लग रहा था ना, उतना शूट करने में मजाकिया नहीं था, बिकॉज दिस वॉज एक्चुअली अ वेरी टफ सीन टू शूट, क्योंकि इनको वाकई में ये सीन एक क्लिफ से लटकते हुए शूट करना पड़ रहा था एंड सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए रिग केबल्स अटैच करनी जरूरी थी, बिकॉज वो जो टेरेन था वो बड़ा स्टीप था। अब ये सारे सीन्स शूट करने के बाद ये जब सीन निकल के आया तो भाई फुल पैसा वसूल था ये सीन। और एक मजे की बात सुनो, ये जो सीन जिस स्पॉट पे शूट हुआ था ना फुकेट में, जहां पर ये तीनों के तीनों एक क्लिफ से लटके हुए थे, इस फिल्म के बाद और इस फिल्म की सक्सेस के बाद इस सीन का नाम ही नो एंट्री स्पॉट रख दिया गया था, अंटिल अ सुनामी वॉश्ड दैट स्पॉट अवे। हाँ, वो स्पॉट कभी हुआ करता था मगर आज नहीं। मगर हाँ, इस स्पॉट को आज भी हम फिल्म में जरूर देख सकते हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सल्लू भाई के डोले तो बड़े है ही हैं, साथ ही साथ उनका दिल भी बहुत बड़ा है यार।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And जब No Entry the movie was being shot ना, at that time, Anil Kapoor of course was the main lead of the film, everybody knew. लेकिन फिर भी सलमान खान ने इस फिल्म को करने के लिए हाँ करी, because जब बोनी कपूर ने उनको ये स्क्रिप्ट दिखाई, तो सलमान खान को ये स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो किसी ना किसी तरीके से इस फिल्म का हिस्सा बनना चाह रहे थे। और जबकि उनका रोल छोटा था, फिर भी उन्होंने अपने इस रोल को निभाने के लिए मुझसे शादी करोगी की शूट एंड नो एंट्री की शूट में बहुत जागल किया। मतलब कभी वो यहां होते थे, कभी वो उस सेट पे हुआ करते थे। एंड इन फैक्ट जो क्रू थी इस फिल्म की, वो भी हमेशा ऐसी रहती थी कि यार कभी भी सल्लू भाई आ सकते हैं अपनी शूट करने के लिए, अपनी शूट कंप्लीट करने के लिए, उनको जहां मौका मिलेगा वो आ जाएंगे। तो वो हमेशा स्टैंड बाय पे रहा करते थे। इन फैक्ट सलमान खान वॉज द वन, जब नो एंट्री की शूट के डिलेज हो रहे थे, तो उन्होंने बोनी कपूर को कहा कि यार पैसों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना काम और अपनी फिल्म खत्म करने के बारे में बात करो, और पैसा वैसा जो भी है ना वो हम देख लेंगे। यानी कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो फाइनेंशियल बैकअप की जरूरत थी, वो उस वक्त सलमान खान ने बोनी कपूर को जरूर दिया था। वहीं अगर बात की जाए फरदीन खान की, तो ये बड़ी मजेदार वाली चीज है यार। मतलब फरदीन खान को कास्ट तो कर लिया था मूवी के लिए, लेकिन जब इनिशियल शूट्स हुए तो अनीस बाजमी को समझ में आ गया था कि यार फरदीन खान की कॉमिक टाइमिंग जो है ना वो थोड़ी डिलेड है, उनके रिएक्शन थोड़े लेट आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉमेडी एक्टर नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फरदीन खान को अनीस बाजमी ने इतना स्पेस दे दिया कि उन्होंने उनके कैरेक्टर को ही उस हिसाब से डिजाइन कर दिया, ताकि फरदीन खान की एक्टिंग के साथ उनके कैरेक्टर के रिएक्शंस जो हैं वो ट्यून इन हो पाए। एंड जो फरदीन खान का कैरेक्टर ऑन स्क्रीन ऐसा दिखाया गया है ना कि स्लो है और स्लो रिएक्शंस देता है, वो बेसिकली उनकी एक्टिंग के टोन से एडजस्ट करते हुए उनके कैरेक्टर को बना दिया गया था। इसे कहते हैं अकल। रिकास्ट करने से तो यही अच्छा था कि कैरेक्टर को ही कास्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ट्यून कर दिया जाए। और इसी के चलते फरदीन खान की कॉमेडी फिल्मों में भी दुकान खुल गई यार। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Free.

Mirchi. It's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बिपाशा बसु जो नो एंट्री में इतना छा गई थी, क्या आपको पता है वो नो एंट्री में होने ही नहीं वाली थी।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, बिपाशा बसु का जो कैरेक्टर था, that was supposed to be played by प्रियंका चोपड़ा। लेकिन फिर हुआ ये कि प्रियंका चोपड़ा को बैकआउट करना पड़ गया क्योंकि वो मुझसे शादी करोगी की शूट में बिजी थी और नो एंट्री की शूट पे नहीं आ पा रही थी, तो उन्होंने जो एडवांस भी लिया था वो भी उनको वापस करना पड़ गया था। लेकिन बिपाशा बसु की जैसे ही एंट्री हुई, एक्चुअली हुआ ये कि इतनी लास्ट मिनट एंट्री हुई ना कि वो एक वेकेशन से लौटी थी और उन्होंने वजन बढ़ा लिया था। अब ये जो कैरेक्टर उनको प्ले करना था वो तो हम सबको ही पता है कि बड़ा हॉट एंड सेक्सी कैरेक्टर था। इनफैक्ट इन एन इंटरव्यू कहीं जॉन अब्राहम को मैंने ये भी बोलते हुए सुना था कि बिपाशा जो थी वो बीमार भी पड़ गई थी, जिसकी वजह से उनके वर्कआउट्स और डाइट्स जो है वो पूरी तरीके से कम्प्लीट ही नहीं हो पा रहे थे, यानी कि हुआ था सोने पे अभागा। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए बिपाशा बसु ने पूरी मेहनत करी और पूरी कोशिश करी कि वो कामयाब हो पाए, एंड इनफैक्ट वो कामयाब हुई भी। आज भी हमें बिपाशा बसु का वो कैरेक्टर इन नो एंट्री स्टिल याद है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बचपन से हम इस गाने को गुनगुनाते आए हैं और आज इसकी धुन की सच्चाई सामने आ गई है।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: वेल, त्रिदेव का ये गाना।

म्यूजिक डायरेक्टर हैं बीजू शाह हैज बीन कॉपीड फ्रॉम दिस गाना. अब आप भी सोच रहे होगे कि क्या यार सारा दोनों धुनें एक के बाद एक बजा दी, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली दो अलग अलग जगहों से उठाई हुई धुनें हैं. एक तो जो मैंने आपको सुनाई वो त्रिदेव की थी, एंड ये जो म्यूजिक जहां से इंस्पायर्ड है, रादर कॉपीड है, इज मायमी साउंड मशीन का द रिदम इज गोना गेट यू. यार वैसे तिरछी टोपी वाले ने तो शौक से एज अ फैशन स्टेटमेंट ये टोपी पहनी थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर बीजू शाह ने तो पूरी ऑडियंस को ही टोपी पहना दी. Wow, stay tuned with me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट सारा जमाना सारा का दीवाना मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: लकी अली एंड सुनिधि चौहान की आवाज में दिस गाना इज फ्रॉम द फिल्म सुर जो कि कैसेट के साइड बी का चौथा गाना है।
0: मिर्ची 90s कैसेट
1: आ भी जा ये गाना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है यार। हालांकि गाना थोड़ा सैड है, मेलैंकली है इस गाने के अंदर, लेकिन ये गाना जो है ये पॉजिटिविटी की बात कर रहा होता है, क्योंकि इस गाने में यही गाया गया है कि आ भी जा ए सुबह आ भी जा और रात को कर विदा दिल रुबा आ भी जा। यानी कि हम जो वो टनल के एंड में एक लाइट ढूंढ रहे होते हैं ना, दिस गाना इज समवेयर अराउंड दैट फैक्ट ओनली। अब ये सुबह ना किसी के लिए मोहब्बत हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये सुबह किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जीने की एक वजह हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इंसान कौन सी सिचुएशन में और उस सिचुएशन के हिसाब से उस इंसान के लिए ये सुबह क्या मायने रखती है। इस गाने में हालांकि मोहब्बत के बारे में बात की गई है और तभी ये कहा गया है कि मैं हूँ गगन तू है जमीन अधूरी सी मेरे बिना रात को कर विदा दिल रुबा भी जा। लेकिन वही वाली बात है कि हम लाइफ में अभी फिलहाल किस चीज को रोमांटिसाइज कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हमें चाहिए और तहे दिल से हम उस चीज के लिए दुआएं कर रहे हैं। मेरी दुआ भी आपके लिए है कि आपकी वो दुआ कबूल हो जाए और जाते जाते यही गाना हो जाए। क्या बोलते हो, ये गाना आपके लिए लगाती भी जा रही हूँ। एंजॉय द ट्रैक एंड मैं अब कह देती हूँ कि हम है रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मिल जाइएगा मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। Stay tuned to Mirchi, 'cause it's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो एंड वेलकम। आज ना एक ऐसे राइटर के बारे में बात करेंगे जिनका कमांड सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं था, वो जितनी खूबसूरती से हिंदी में लिख लेते थे उतनी ही खूबसूरती से उर्दू में भी लिख लेते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी फिल्में नहीं बनाई, अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि जब वो फिल्म बनाते थे ना तो पूरी तबीयत से बनाते थे, पूरा अपना टाइम लेकर के बनाते थे। जब आगे बढ़ जाते थे और उन्हें लगता था कि ये जो पोर्शन मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ वो इतने बेहतर नहीं है, तो फिर से सब कुछ स्क्रैप करके फिर से नया शूट करते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि उनका ऑडियंस जब सिनेमा हॉल से उठे तो ये कहते हुए उठे कि वाह कमाल अमरोही ने क्या फिल्म बनाई। तो आज कमाल साहब की बात करेंगे जिन्होंने मीना कुमारी के साथ बनाई पाकीज़ा, हेमा मालिनी के साथ बनाई रज़िया सुल्तान, मधुबाला के साथ बनाई महल। तो बस कहीं भी मत जाना, श्रेया के साथ यहीं रुकना, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब भी वो अपना लिखा कुछ पढ़ते थे ना, तो लोगों की महफिल जम जाती थी और तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। अच्छा, अमरोही कैसे, ये नाम कैसे पता? ये उनका सरनेम नहीं था एक्चुअली, ये पैदा हुए थे यूपी के एक छोटी सी जगह जिसका नाम था अमरोहा में। मुंबई गए, वहाँ काम करने लगे, लेकिन अपने अमरोहा को बहुत मिस करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया कमाल अमरोहा से अमरोही, वही नाम जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। अच्छा, कमाल अमरोही को बॉलीवुड में, ओ सॉरी, उस टाइम तो इसे इंडियन सिनेमा कहते थे, यहाँ पर लेकर के कौन आया, अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

वो क्या कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। आपको पता है उनको इंडियन सिनेमा में कौन लेकर के आया था? वो जिनका नाम लेते हुए भी इस समय ना मेरे हाथ कानों को छू लेते हैं। इट वॉज नन अदर देन केएल सहगल साहब। तो केएल सहगल कमाल साहब से मिले थे एक पार्टी में। वहां पर कमाल साहब को कोई खास जानता नहीं था। केएल सहगल से वो एज अ फैन बॉय मिलने गए और उनकी तारीफ में अपना लिखा हुआ कुछ पढ़ा। सहगल साहब उनकी लिखावट से इतने इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये नया लड़का जरूर इंडियन फिल्म्स में कुछ कर सकता है। उन्होंने ऑफर किया कि चलो भाई मेरे साथ बॉम्बे चलो, तुम यहाँ के लिए नहीं वहाँ के लिए बने हो। बस कमाल साहब को

एक मौका चाहिए था, वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई शुराब मोदी से, जिनके साथ उन्होंने जेलर, पुकार इन दो फिल्मों पे काम किया। पर वो कौन सी फिल्म थी जिसने रातों रात कमाल साहब का नाम हर घर में पहुंचा दिया? अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई आई

अरुमान। इस फिल्म से बहुत सारे लेजेंड्स अपनी शुरुआत करने वाले थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू एक ऐसी फिल्म बनी जिसने बहुत सारे उन कलाकारों को पहली बार जगा दी जो इंडियन सिनेमा में आने वाले कई सालों तक राज करने वाले थे। कमाल अमरोही साहब की पहली गोस्ट फिल्म जिसका नाम था महल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया मधुबाला जी ने और उनपे एक गाना पिक्चराइज किया गया था आएगा आने वाला, जो कि गाया लता जी ने। लता जी ने वैसे बहुत सारे गाने गाए थे इससे पहले, लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना जब ऑल इंडिया रेडियो पे आया ना, तो वहाँ के फोन ना बजते हुए रुक नहीं रहे थे ये पूछने के लिए कि ये गाना किसने गाया है। सो इन अ वे लता जी का भी ये डेब्यू था, विच मेड हर अ स्टार। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें विद मी श्रेया। सो वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: अमोरे मियो तो वे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाता था ना, तो वो इक्वली इन्वेस्टेड, इक्वली इन्वॉल्व होता था इन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, इन द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म. मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे, लेकिन डायरेक्टर का इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट. और अगर कहीं वो कमाल साहब की फिल्म, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक में उतर आते थे. इतनी बारीकियां. आपको पता है फिल्म पाकीज़ा, जो उन्होंने मीना कुमारी यानी अपनी वाइफ के साथ बनाई थी, इस फिल्म को बनाने में कई साल लग गए. एक तो मीना कुमारी और कमाल साहब के बीच में मनमुटाव हो गया था, दोनों अलग हो गए थे, तो इसलिए फिल्म रुक गई थी 10 सालों के लिए. उसके बाद जब बननी भी शुरू हुई, तो कमाल साहब वो सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग कि जो एक्स्ट्रास होते थे ना, उनकी ज्वेलरी, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सब वो खुद किया करते थे. अब भाई इस फिल्म की बात हुई है, तो इसी फिल्म का गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. सो पाकीज़ा का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू. मेरा नाम है श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आज एक ऐसे डायरेक्टर, एक ऐसे राइटर के बारे में बात हो रही है पुरानी जीन्स पे, जिनके लिए कह सकते हैं दैट ही वाज मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, कमाल अमरोही साहब, जो जब फिल्म बनाते थे ना तो तबीयत से बनाते थे, पूरा समय लेकर के बनाते थे। इसीलिए अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने सिर्फ चार फिल्में बनाई। जब उन्होंने महल बनाई, जो कि फर्स्ट हॉरर फिल्म कही जाती है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर कमर्शियल हॉरर फिल्म ऑफ इंडिया कही जाती है, जब वो बना रहे थे ना, तो उसके डायलॉग्स में भी इक्वली इन्वॉल्व थे। इस फिल्म के डायलॉग्स पूरे इंडिया में पॉपुलर हुए। एक डायलॉग था, मुझे जरा होश में आने दो, मैं खामोश रहना चाहता हूँ, विच बिकेम इमेंसली पॉपुलर। और दूसरा पता है कौन सा था? स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे अक्सर हसीन। मुझे लगता है कि जब भी उस जमाने में कोई अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाता था तो ये डायलॉग जरूर बोलता होगा। कमाल साहब की आज कमाल की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। बस वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक इंडियन सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ था जो कमाल साहब ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू महल फिल्म के साथ किया। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही की बात हो रही है, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी महल। पहली बार ऐसा हुआ जब ये भूत वाली फिल्म में एक बैकग्राउंड गाना दिया गया और वो थ्रू आउट द फिल्म कैरी फॉरवर्ड रहा। मतलब वो गाना इंडिकेट करता था कि फिल्म में अब कुछ भूतिया होने वाला है, फिल्म में अब कुछ सस्पेंस आने वाला है, है ना। कमाल साहब की शुरुआत करने के बाद इस ट्रेंड को इंडिया की हर सस्पेंस, हर मिस्ट्री फिल्म ने, हर घोस्ट फिल्म ने फिर फॉलो किया। फिर चाहे वो मधुमती हो, वो कौन थी हो, या फिर मेरा साया। तो इसकी शुरुआत करने वाले वही थे अपने कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पे आज उन्हीं की बातें, बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: Mirchi. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, आजकल एक ही डायरेक्टर कई सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने अपने बहुत बड़े करियर में सिर्फ 4 फिल्में बनाई, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो क्वालिटी वर्क बनाए। वो हमेशा ये चाहते थे कि जब भी ऑडियंस सिनेमा हॉल से निकले ना, तो ये याद करके निकले कि उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म देखी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। वो 4 फिल्में जो कमाल साहब ने बनाई, एक तो महल, दूसरी पाकीज़ा, तीसरी रजिया सुल्तान और एक चौथी थी जिसका नाम था दायरा। इन सबके बीच में ना एक फिल्म बनाने का सपना उनका अधूरा रह गया। वो कौन सी फिल्म थी अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कमाल अमरोही साहब जैसे इंसान जब किसी को तोहफा देंगे तो वो भी तो एकदम कमाल, एकदम नायाब होगा। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। हाँ, तो कमाल साहब की बात हो रही है, उनकी और मीना कुमारी की शादी की पहली रात। कमाल साहब मीना कुमारी के पास गए। अब भाई वो ट्रेडिशन होता है ना कि आप शादी की पहली रात कोई तोहफा दोगे अपनी वाइफ को। कमाल साहब गए मीना कुमारी के पास और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर जिससे ये दुनिया जब भी तुम्हारा नाम लेगी तो वो फिल्म का नाम भी साथ में आएगा। ये फिल्म उन्होंने बनाई। ऑफ कोर्स काफी साल लग गए इस फिल्म को बनने में क्योंकि दोनों बीच में अलग हो गए थे, बट दे केम बैक टुगेदर टू कंप्लीट दिस फिल्म। फिल्म का नाम पाकीज़ा, जिसमें बेहद खूबसूरत लगी मीना कुमारी। तो ये थी पाकीज़ा की शुरुआत होने की कहानी। एक और कहानी बाकी है अभी कमाल साहब की एक अधूरी फिल्म की, बताऊंगी उसके बारे में भी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

महल बनाई इन्होंने, पाकीजा बनाई इन्होंने, रजिया सुल्तान बनाई इन्होंने। अब इनका ड्रीम था आखिरी मुगल बनाने का। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब की। तो मैं बता रही थी कि कैसे पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में इन्होंने बनाई और एक फिल्म पे काम कर रहे थे। इनका ड्रीम था हिस्ट्री पे एक फिल्म बनाने का और उसका नाम इन्होंने रखा था आखिरी मुगल। इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने आधी लिख ली थी और स्क्रिप्ट से पहले इसके गाने भी बन गए थे, पर ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। उनके जाने के बाद लोगों ने इस स्क्रिप्ट को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कमाल साहब की लिखी हुई ये कहानी कहीं खो गई। लेकिन हाँ, गानों का कुछ हुआ। क्या हुआ आपको तो पता ही है, ऐसे इतनी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं बताती हूँ। गाने सुन करके वापस आओ, विल लेट यू नो पूरी कहानी ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

1989 में एक फिल्म आई जिसने कमाल अमरोही साहब की अधूरी फिल्म आखिरी मुगल का एक गाना ले लिया, एक गाना यूज किया। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूं श्रेया और आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। सो एक अधूरी फिल्म वो छोड़ करके गए जिसका नाम था आखिरी मुगल। उनका ये ड्रीम था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो कि इंडिया की हिस्ट्री पे हो। इस फिल्म का नाम उन्होंने रखा था आखिरी मुगल। कमाल साहब वॉज प्लानिंग द फिल्म, आधी फिल्म लिख ली थी लेकिन इसके गाने कई सारे रिकॉर्ड कर लिए थे। अब फिल्म तो बीच में रुक गई थी, तो पता है उन्होंने एक गाना सेल किया और ये उन्होंने दिया था टू द मेकर्स ऑफ अ फिल्म जिसका नाम था जिस्म का रिश्ता। 1989 में ये फिल्म आई थी और इसी फिल्म में रफी साहब का एक गाना यूज हुआ था जो कि आखिरी मुगल के लिए बनाया गया था। पुरानी जीन्स पर कमाल अमरोही साहब की ये कमाल की बातें आज चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया।
1: कभी किसी को

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है, और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं? अच्छा, आज का हाईवे हेट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं, और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक रियलिटी शो पे शुरू हुआ था इनके 7 जन्मों का सफर।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मैं बात कर रही हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अल्टीमेट म्यूजिशियन एंड सिंगर डुओ सचेत टंडन एंड परंपरा ठाकुर, जो अब बन चुकी हैं परंपरा टंडन। एंड यू नो, अक्सर आपने अपने आसपास सुना होगा कि यार अपने वर्क स्पेस में ना आपको कोई रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग गेट्स मिक्स्ड अप, कोई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ नहीं रह जाती। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सचेत एंड परंपरा, जो मिले थे द वॉइस ऑफ इंडिया के फर्स्ट सीजन में और वहां शुरू हुई उनकी म्यूजिकल पार्टनरशिप। एंड इवेंचुअली बॉलीवुड गॉट द डुओ बिहाइंड बेखयाली एंड मच मोर लव्ड सॉन्ग्स। और आज अचानक इन दोनों के पार्टनरशिप की बात इसलिए चल रही है क्योंकि मेरे शो पे होने वाले हैं ये दोनों ही मिर्ची गिरफ्तार, जिनसे होगी इनके करियर इनके। अपने अपने आसपास सुना होगा कि यार अपने वर्क स्पेस में ना आपको कोई रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग गेट्स मिक्स्ड अप, कोई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ नहीं रह जाती। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सचेत एंड परंपरा, जो मिले थे द वॉइस ऑफ इंडिया के फर्स्ट सीजन में और वहां शुरू हुई उनकी म्यूजिकल पार्टनरशिप। एंड इवेंचुअली बॉलीवुड गॉट द डुओ बिहाइंड बेखयाली एंड मच मोर लव्ड सॉन्ग्स। और आज अचानक इन दोनों के पार्टनरशिप की बात इसलिए चल रही है क्योंकि मेरे शो पे होने वाले हैं ये दोनों ही मिर्ची गिरफ्तार, जिनसे होगी इनके करियर इनके एंड मच मोर लव्ड सॉन्ग्स। और आज अचानक इन दोनों के पार्टनरशिप की बात इसलिए चल रही है क्योंकि मेरे शो पे होने वाले हैं ये दोनों ही मिर्ची गिरफ्तार, जिनसे होगी इनके करियर इनके।

टेस्ट सैंडविच, हैमबर्गर या बटर रोल, सबसे मैं हूँ टेस्टी, सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल। गुस्सा तेरी गोली जैसा, बोल तलवार से, दिल का शिकार कर, हनी जरा प्यार।

0: and it's time to find Mirchi for Lunchy.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: Mirchi पे ट्यून इन हो आप, and if you're listening to me for the first time, then let me remind, अभी का जो सेशन होता है वो Mirchi for Lunchy ढूंढने का होता है, जहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ to go to my Instagram and DM करो अपना नंबर, ताकि मैं आपको कॉल करके ये फिल्मी गेम खेल सकूँ. So आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है हिमांशु जी. शुरू करें?
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
0: ओके, तो मेरा पहला सवाल ये है कि सलमान खान की फिल्म जिसमें उनका एक डायलॉग है, चलती है क्या 9 से 12?
3: चलती है क्या 9 से 12? ये तो जुड़वा.
0: ग्रेट. जुड़वा में माला का रोल किसने प्ले किया है?
3: माला का रोल वो करिश्मा कपूर.
0: ग्रेट. करिश्मा कपूर की फिल्म जिसमें वो डांसर बनी है?
3: ये शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित वाली.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
3: दिल तो पागल है.
0: बहुत ही बढ़िया. दिल तो पागल है में डांस ग्रुप के डायरेक्टर कौन होते हैं?
3: शाहरुख खान.
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो 6 दिन में लड़की इन करवाते हैं?
3: वो सैफ अली खान और प्रीति जिंटा वाली.
0: हाँ हाँ.
3: कल होना हो.
0: बहुत ही बढ़िया. कल होना हो कि नैना कौन है?
3: प्रीति जिंटा.
0: प्रीति जिंटा की फिल्म जिसमें वो आरजे बनी है और प्रेग्नेंट हो जाती है?
3: सेम अगेन सैफ अली खान के साथ है.
0: हाँ. कोई बात नहीं, बट इतना अच्छा जो गेम यहाँ तक कंटिन्यू किया है आपने, उसके लिए आपको ये टैग मिलना तो बनता है हिमांशु जी.
1: मिर्ची फिल्म जी.
0: So my dear friend, अगर इसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, then you already know the drill. Mirchi Shruti के इंस्टा पे जाके अपना नंबर सेंड कीजिए and rest मेरे ऊपर छोड़ दीजिए. Stay tuned, it's hot.

Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: not your typical monsoon movie.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: चक धूम धूम, चक धूम धूम, चक धूम धूम. देखो यार, बारिश और बॉलीवुड से सबसे पहला गाना मेरे दिमाग में यही आता है. या फॉर दैट मैटर, गीली साड़ियों में नाचती लड़कियां, कोरियोग्राफ्ड नंबर्स एंड व्हाट नॉट. लेकिन आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी मॉनसून मूवीज की बात कर रही हूँ जिन्होंने बारिश को एकदम ही अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया है. लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट मॉनसून वेडिंग, नंबर दो पे तुम्बाड, नंबर तीन पे रेनकोट, एंड अब बारी है टू टॉक अबाउट द मूवी कौन. ये फिल्म आई थी 1999 में. एंड कुछ फिल्में आपको डराती हैं, कुछ फिल्में आपको हर इंसान पर शक करना सिखाती हैं. वेल, कौन उन्हीं फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को देखने की तीन वजहें हैं. पहली, सिर्फ तीन कैरेक्टर्स और लगभग पूरी फिल्म एक ही घर के अंदर, फिर भी सस्पेंस एक सेकंड के लिए भी कम नहीं होता. दूसरी, उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंसेस जो बिना लाउड हुए आपको एज ऑफ योर सीट पर बिठा देती हैं. और तीसरी, इसका ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि भाई असली खतरा था कौन. और इस पूरी कहानी के बीच जिस हिसाब से बारिश और थंडर अपना रोल प्ले करते हैं, दैट ट्रैप्स यू इनसाइड इट्स पैरानोया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर पांच पे बात करूंगी अबाउट द फिल्म धोबी घाट. मुंबई को अगर किसी फिल्म ने सिर्फ दिखाया नहीं महसूस करवाया है तो ये फिल्म है. इस फिल्म को देखने की तीन वजहें हैं. पहली, मुंबई ऑफ कोर्स, यहाँ शहर सिर्फ बैकड्रॉप नहीं, फिल्म का एक जिंदा कैरेक्टर है. दूसरी, चार अलग जिंदगियां जो एक दूसरे से जुड़ी भी हैं और बिल्कुल अलग भी, जस्ट लाइक आवर वेरी ओन मुंबई. और तीसरी, इसकी खामोशी. ये फिल्म डायलॉग से कम और नजरों, तन्हाई और अनसेड इमोशन से ज्यादा बात करती है. और इस फिल्म के जरिए किरण राव बहुत ही खूबसूरती से अर्बन लोनलीनेस को बारिश के साथ पेंट करते हुए दिखाती हैं. तो बताइए, पांच का पंच की मेरी इस लिस्ट में आप कोई ऐसी ही फिल्म ऐड करना चाहोगे? मिर्ची श्रुति के नाम से लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस दैट. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

मिर्ची, इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, इट्स हॉट।